रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आए थी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिए। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाई टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: Tech Talks with RJ Zeus.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूँ आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar beats with Harshadeva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM और मैं हूं आपका साथी आरजे इज़्यूस। दोस्तों रेडियो चुनाव की हॉट फ्रीक्वेंसी पर दोपहर के भाई भाई टाइम आई एम हियर इन द स्टूडियो आपसे बतियाने के लिए, तो जल्दी से फोन उठाए और फॉलो शेयर सब्सक्राइब कीजिए रेडियो चुनाव के ऑफिशियल हैंडल्स को, साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया की किसी भी कोने में। और दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM से धड़काते रहो।

0: हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम और दिल की धड़कन।
4: हुसन तेरा

0: जूस। कौन आया?
1: हाय, मैं हूँ आरजे ज्यूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।
2: रेडियो चैनल, रेडियो रेडियो चैनल, वेदर अपडेट, वेदर अपडेट। रेडियो चैनल, रेडियो रेडियो चैनल, वेदर अपडेट, वेदर अपडेट।
3: रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर ब्रदर आज का वेदर,
2: वेदर अपडेट, वेदर अपडेट।
3: जी हाँ, वेदर क्या बताएगा ब्रदर, हम तो आप तक बताएंगे, पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आप फोन उठाएंगे और डायल करेंगे 8888-9904।
2: रेडियो चैनल, रेडियो रेडियो चैनल, वेदर अपडेट, वेदर अपडेट।
3: 8899-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0 और इस फ्रीक्वेंसी मजेदार शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में ब्रदर आज का वेदर अपडेट जी आज का मौसम होने वाला है मोस्टली सनी, पूरा दिन सूरज चमकेगा और आज दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है दैट इज गोइंग अप टू 30 डिग्री सेल्सियस।
2: वेदर अपडेट
3: वैसे आज और आने वाले दिनों में कुछ भी गरज बरस की संभावना नहीं है, धीरे धीरे टेम्परेचर जो है ऊपर चलता जाएगा।
2: रेडियो चिनार वेदर अपडेट
3: वैसे अभी तो बताया था बीट द हीट वाले थीम में कि कैसे आप गर्मी को टैकल कर सकते हैं, कैसा डशम पशम करके अपने आप को कूल कर सकते हैं।
2: रेडियो चिनार
3: तो गर्मी में इस चीज का ख्याल रखना है कि जो भी पीक अवर्स है उस टाइम बाहर नहीं जाना है, अवॉइड करना है। अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो चिल मार के फैन या एसी के नीचे बैठ कर तब ठंडी का मजा लो।
2: वेदर अपडेट
3: फिलहाल अभी के लिए यूवी इंडेक्स जो है मॉडरेट पर है, ह्यूमिडिटी है 53%, 0 किलोमीटर पर आवर की है विंड स्पीड, 4 किलोमीटर है विजिबिलिटी। आज का सनराइज हुआ 5:30 पर, आज का सनसेट होगा 7:42 पर। शोर सुनकर ही समझ गए गाना कौन सा, गर्मी का जिक्र आया तो गर्मी वाला गाना चल गाना। हाय गर्मी वाला गाना कहे नहीं जाना, रेडियो चिनार पर खुलकर बजाना। जी हाँ, हर दिल के धड़कन और धड़काते हैं यार। तो गाने एंजॉय कीजिए, आई विल बी राइट बैक सेट अ हॉक जॉक जूस के साथ। आप सुन रहे मजेदार शो बाटसा, व्हाट्स फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन सेट अ हॉक धड़काते रहो।
0: तो सेक लगे
4: इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया, सही आज टपक टपक के हाय पसीना छ।

0: जूस कौन आया
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: व्हाट्सएप पे जी हाँ दोस्तों, रेडियो चुनार की हॉट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम आप तक पहुंचाते हैं जो भी वायरल हो जाता है।

कुछ भी वायरल हो रहा हो, वो क्या है, जबान थोड़ी सी फिसल रही थी तो मैंने इसे करेक्ट कर दिया एकदम ग्रिप में लाके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वायरल हो रही है, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं वो जो आपके ज्ञान में इजाफा करे। तो मेहरबान कदरदान अपनी कमर बांध लीजिए, क्योंकि बांधी कमर यहाँ पे साड़ी के आई अब मतलब आंटी की बारी। गाना जबान से फिसल कर आ गया, लेकिन वायरल आंटी नहीं, वायरल रहे अंकल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलान मस्क की। इलान अंकल जो वायरल हुए हैं, मतलब कतई दिल गदगद होए जा रहा है, क्योंकि नियरली ये ही इज़ वेरी नियर माई डियर टू बिकम अ ट्रिलियनेयर। और दुनिया का ऐसा शख्स जो कि बनने जा रहा है ट्रिलियनेयर, और ये मैं नहीं बता रहा, बता रही है NBC की रिपोर्ट। अब ट्रिलियनेयर सोचकर आप नहीं सोचते कि मतलब इमेजिन सुबह उठता है बंदा, पैसा इधर, पैसा पैसा पैसा अंदा पैसा, मगर कशन सह टोट वा पोस क्या कर दिलस गकून आसत गुन समाजस मार दोस्तन मज रिश्तदार खुदा तस्त सारे फिलहाल ये वायरल था तो वह सब भरा गया। हॉट इज फ्रीक्वेंसी और दिल की धड़कन, मैं हूँ।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन।
4: हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है आई एम इन चार्ज ऑफ हाउ आई फील एंड टुडे आई एम चूजिंग happiness. Wishing you a great day. Stay hooked to the hottest frequency. मैं हूँ चौकसी तड़का दे रहा हूँ।

और दिल की धड़कन को मिलकर धड़का रहे हैं हम और आप। रेडियो चनौर की हॉट फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप। मैं हूं आपका साथी जगजीत। दोपहर के भाई बिश्तान ये जो एंटरटेनमेंट की गाड़ी है यूं ही खींचती रहेगी और साथ साथ चलते रहेंगे हम और आप। और फिलहाल यहां पर कुछ दोस्त जिन्होंने हिस्सा लिया है शो में। शारिक हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं, शारिक सर बड़े टाइम के बाद मैसेज कर रहा हूँ, घर की परेशानियों में उलझा हुआ था, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शारिक और सभी दोस्तों के लिए दुआ जरूर करें, क्या इसके दायक कर सच्चे इंसान फलान से। जाहिर सी बात है आप जिस भी चीज़ से जूझ रहे हैं, आपके जो भी मसले हैं वो सेटल हो जाए, हमारी यही दुआ है आपके लिए। शारिक थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। राफिया हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं, राफिया सर मुझे भी शौक था आरजे बनूं, लेकिन जैसे जैसे जान रही हूं या पढ़ रही हूं आरजेइंग के बारे में तो लगता है मुझसे ना हो पाएगा। अरे बेटा तुमसे ना हो पाएगा, वैसे होना जरूरी है। देखो हिशुनी वहाँ का ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा मेहनत करें, मशक्कत करें और बेसिक्स जो है उन्हें जानें और तभी जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए किताब जो थ्योरी है वो ज़रूरी है मैं समझता हूँ, और प्रैक्टिकल उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आपका मन है आरजेइंग करने का या आरजे बनने का तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल व्हाट आई मीन टू से इज़ देयर आर डिफरेंट स्टेशन जो कि इंटर्न वगैरह के लिए ओपन रहते हैं। सो यू कैन ट्राई इट ऑन, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आपको इंटर्नशिप कराई जाएगी। और रेडियो के बारे में तफसीलन गौर कीजिएगा, तफसीलन बताया जाएगा। रफिया हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। अभी हमारे साथ जुड़ सकती है, अभी अपनी बात हम तक पहुंचा सकती है, कैसे 8899904904 इज द नंबर 8899904904 छो नंबर या फिर तुम कॉल है क्यों करी तो व्हाट्सएप या है क्यों करी टेक्स्ट मैसेज तो पानी निकाला इसका है बात ना है। हर दिल की धड़कन रेडियो चनौर है दरगाह दे रहा। वैसे धड़काने से पहले कि और जोरों से आप जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क करते तो आपको फड़कता हुआ टॉपिक बता दूं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं केयर एंड काइंडनेस की। केयर और काइंडनेस क्यों है इंसानियत के लिए ज़रूरी ये तो आप जानते हैं, लेकिन खुल कर जानेंगे आज क्योंकि टॉपिक है आज वह सब जो का फैक्ट्स और रिसर्चेस पर बात करेंगे आज केयर एंड काइंडनेस की। लेकिन उससे पहले पुष्पा आई हेट दिस साइलेंस, म्यूजिक जरूरी है तो म्यूजिकल और इंफॉर्मेशन यानी इंफोटेनमेंट का डोज लाइक एवरी रोज। मैं हूं जॉक्स रेहक दरगाह दे रहा।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तर शो व्हाट्सएप शो में आज बात हो रही है केयर एंड काइंडनेस की। जी हाँ, केयर एंड काइंडनेस लोगों के लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन जब आप केयर एंड काइंडनेस दिखाते हैं आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, चलिए बताता हूँ। यहाँ हेल्पर्स हाई जिसे एक्ट ऑफ काइंडनेस इंगेज करता है और ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और एक रश दिमाग रिलीज करता है डोपामाइन, जो कि आपके दिमाग को एक रिवॉर्ड की तरह महसूस होता है और आप बहुत ही अच्छा फील करने लगते हैं, जिससे स्ट्रेस जो है रिड्यूस हो जाता है और आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है और आपकी हार्ट रेट भी स्टेबल हो जाती है। सुना कैसा ये डिस्क से माता चक्रा दिल सुकून है वह इंसान मदर ने अंदर पे वहाँ सोचा वाई ये मैं चीज कर है। और बस ये है कि अगर आपने नफरत पाल ली तो आपकी जहनियत दिल जिस्म रूह सब डगमगा जाता है, वही अगर आप केयर एंड काइंड है तो जाहिर सी बात है आपकी जिंदगी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। और वही अगर हम आइसोलेटेड लोगों की बात करें तो जब दूसरों के लिए काइंडनेस दिखाते हैं तो जाहिरन उनका जो आइसोलेशन का जाल है वो भी टूटने लगता है, क्योंकि डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंग महसूस होती है और लोग आपसे खुलकर मिलते हैं और वही चीज़ काम करती है अगेंस्ट द डिप्रेशन एंड एवरीथिंग दैट इज नेगेटिव इन योर लाइफ। सो फिलहाल उन लोगों के लिए गाना जो प्यार करके पछता रहे हैं आप भी कहीं मत जाना, सुनते रहना और हर दिल की धड़कन को जोरों से धड़काना। शो का हिस्सा बनने के लिए 8899-04904 इज द नंबर। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव से धड़काते रहो।

0: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम।
1: Shakalaka baby, shakalaka baby.

0: Ya. Adiós, amigo.
1: Yes.
2: हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो टनार 90.4 FM।

FM Up, Enjoy, Career, Mazdar Show, What's Up. What's Up Show में अगली पेशकश Tech Talks and Bollywood News. जी हाँ, Tech Talks यानी Tech की World से क्या है Recent Updates और क्या है Bollywood में हो रही हलचल, पहुंचाएंगे आप तक खबर पल पल. जरा सा इंतजार देते रहे प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार. और इस फ्रीक्वेंसी पर मैं हूँ जॉक्सिस, मजदार शो वो सबसे धड़काते

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: to do's.
1: Kommer der, ja.
2: Dead dogs, dead dogs. Dead dogs, dead dogs. Dead dogs, dead dogs.
3: Dead dogs. With Archie Zeus.
2: Dead dogs, dead dogs.
4: दोस्तों रेडियो चैनल की हॉट फ्रीक्वेंसी पर मजदा शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आइए करते हैं बात द एक्सपेंडेबल चिप की। अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं वो एक ही लाइक सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें चाइना की तो चाइना कुछ ना कुछ बनाता रहता है और उन्होंने डेवलप किया है स्ट्रेचेबल सर्किट जो कि कैपेबल है

फंक्शनिंग करता है इवन इफ इट इज सिग्निफिकेंट टेंशन में. मतलब आप समझ सकते हैं, एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा चिप जिसे आप खींच भी दे वो स्ट्रेच होगा, लेकिन उसके बाद भी उसका फंक्शन जो है ज्यों का त्यों रहेगा और उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जस्ट इमेजिन इससे कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है कोई भी गैजेट, एक चिप जो कि तोड़ा मरोड़ा जा सकता है. अक्सर देखा गया है इफ देयर इज अ स्लाइट ब्रेकेज फॉर एग्जांपल फोन में, तो उसका जो चिप्स या मदरबोर्ड जो चिप्स वगैरह होल्ड करके रखता है या जो मेन सर्किट या मेन बोर्ड होता है कंप्यूटर का या मोबाइल का, वो डैमेज हो जाता है. एंड आफ्टर सच काइंड ऑफ इन्वेंशंस यू कैन इमेजिन हाउ फ्लेक्सिबल डिवाइसेस कैन बी. अब ये जो रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन हुआ है ये कितना कारगर रहेगा वो हम भी देखेंगे. अभी फिलहाल आपके लिए जस्मीन की खूबसूरत आवाज में ये ट्रेंडिंग ट्रैक. और इस फ्रीक्वेंसी पर मैं हूँ जॉक्स, धड़काते रहो.

0: News.
1: Kom her, ja.
2: Bollywood News.
3: दोस्तो रेडियो चुनाव 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप शो में मैं हूं आपका साथी जग्सिस और सेगमेंट बॉलीवुड न्यूज़
2: बॉलीवुड न्यूज़ बॉलीवुड न्यूज़ बॉलीवुड न्यूज़ बॉलीवुड न्यूज़
3: बड़े टाइम से चल रही थी कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू क्रिश फोर और फाइनली राकेश रोशन ने शट डाउन करा है, रिपोर्ट्स को कहा है गलत है। रश क्रिश फोर से रिलेटेड जो भी अफवाह उड़ाई जा रही है, देयर इज नो सच इशू, कोई भी इख्तलाफ, गौर कीजिएगा, इख्तलाफ नहीं है ऋतिक रोशन और यशराज फिल्म्स के बीच। बताया जा रहा था कि बजट पर हो रही है घमासान, लेकिन राकेश रोशन का कहना है कि कोई ऐसा मामला नहीं है। क्या क्रिश फोर रिलीज होगी? क्या ऋतिक रोशन फिर से उड़ते हुए दिखाई देंगे? अब कौन होगा जो शक्तियों का गलत फायदा उठाएगा? देखेंगे हम भी आप भी। रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर सीधे हट दरगाह।

जी हाँ दोस्तों, इसी ट्रैक के साथ आज के लिए इजाजत और मुलाकात होगी कल। आप अपना ध्यान रखिए, रेडियो चुनार सुनते रहिए। कुछ ही देर में जुड़ने वाली है आपसे आरजे दीवा, शो का नाम रहेगा चुनार बीट्स। जी हाँ, धरती भी हिलेगी और समा भी बनेगा क्योंकि आप सुनेंगे चुनार बीट्स में बीट्स ऑन रिपीट। दिस इज बैड बॉय ज़ूस साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अंटिल वी मीट अगेन, कीप योर हेड्स हाई, वॉक टॉल एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट आई लव यू ऑल। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मा सलामा।

0: ये लॉन्ग ड्राइव पे तो नहीं चल सकते बेटा, थोड़ी सी दूर जर्नी हमारी भी आपकी भी और मंडे है जो भैया। 91.4 रेडियो चैनल पर आगाज हो चुका है शो चनार बीट्स का, फुल ऑन बीट्स एंड रिपीट, ढेर सारी बातें और शो चनार बीट्स है तो इसमें फुल ऑन ड्रामा मस्ती और क्या कुछ नहीं है, बस
1: आरजे ज्यूस।
0: आरजे ज्यूस तो नहीं है, दीबा हूँ और बराबर आपके साथ रहूँगी 2 बजे तक, ढेर सारी बातें करूँगी। शो का नाम चनार बीट्स।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: बेस ऑन रिपीट शो चुनाव रिपीट सब एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM ढेर सारी बातें हो रही है मस्ती मजाक वन एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है सो आई एम सुपर एक्साइटेड शुरुआत हुई ही है क्योंकि मंडे है बॉस एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज वो दिल की कुछ बातें होती है जो दिल में छुपाई होती है और जब दिल में वो बातें वो कहते हैं ना कि गुड़ हो जाती है कि नहीं नहीं नहीं दिल में क्यों रखनी है आपसे बात करनी है मेरी वाइब ट्राइब है सो इतना ही चाहिए इससे ज़्यादा मुझे और कुछ चाहिए नहीं सो शो चुनाव बीट्स है बीट्स और रिपीट है ढेर सारी बात है आप हैं हम हैं क्या है दस्तूर कहाँ जाने का हजूर शो कैसा बन जाइए 8899049046 व्हाट्सएप कीजिए और शो पे मेरा साथ दीजिए
1: ना शायद तो बहुत डर लगा है हे वैष्णो देवी अगर सब कुछ अच्छे से हो गया ना तो मैं विजय के साथ आपके
0: देखिए सब कुछ अच्छा ही जा रहा है बस आपके चढ़ने की देरी है सुनने हॉरिस फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 90.4 FM बैक टू बैक सॉन्ग्स मैं हूं दीवा आप सुन रहे हर दिल की धड़का

0: दीदी
1: हाँ
0: भैया आपको आई लव यू कह रहे थे
1: उससे अप्पा
2: जनरेटर चलाई यार और कमाल करता था।

सुन रिपीट शो चुनाव रिपीट सब एंजॉय कर रहे हैं और रेडियो चुनाव 90.4 एफएम डी सारी बातें हो रही है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो नेशनल हाईवे पे आपको बता दें कि बहुत साइड से ट्रैफिक अलो किया जा रहा है, आप आराम से आ सकते जा सकते हैं और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं. बस बी केयरफुल, बी कॉशियस, बिकॉज आज जो है मनाजे यात्रा की तैयारी चल रही है और आने वाले वक्त में हम काफ़ी ज़्यादा रश देख सकते हैं बिकॉज ऑफ यात्रा. हमने ख्याल रखना है, रूट्स का ख्याल रखना है एंड वी हैव टू बी केयरफुल. अगर हमने ट्रैवल करना है नेशनल हाईवे जम्मू एंड कश्मीर, आपको गाइडलाइंस के मुताबिक ही अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है. फिलहाल के लिए अगर आप ड्राइव कर रहे हैं सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाए, गलत जगह पे ओवरटेक करना नॉट फेयर, क्योंकि फिर वही है कि हर वाणी में गड़बड़ी हो जाती है और हमें लगता है हम चालाक है, बट फाइन बनने के बाद हमें पता चलता है कि नहीं जी, ये तो बेवकूफ़ी वाली काम है. सो हम तक है, हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे चाहे तो हम सही से जा सकते हैं, एक सही मैसेज दे सकते हैं या फिर हीरो नहीं ज़ीरो बनने की कोशिश करेंगे तो ज़ीरो ही बनेंगे, हीरो नहीं बनेंगे. सो हीरो बनिए ज़ीरो नहीं, कूल बनिए फूल नहीं. और फिलहाल के लिए कूल बनेंगे आप 8888-9904-904 पर कॉल करके टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनार बीट्स का हिस्सा बन जाए. वेल, ऐसा ही कुछ मौसम है कि चांद तो कोई निकल गया है. अब ये है कि उबरती सी तड़पती सी अब समझ नहीं आ रहा इस मौसम ही क्या है. हाइड एंड सीक खेल रहे हैं हमारे साथ, बट आप ना खेलिए हाइड एंड सीक. आपके पास तो नंबर भी है, रिपीट करें 8888-9904-904 आप टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, सूचना और बीस कैसे बन जाएगा.

बीट्स ऑन रिपीट, शो चुनाव रिपीट, सब एंजॉय कर रहे होंगे। और रेडियो चुनाव 90.4 FM, ढेर सारी बातें हो रही है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नशा मुक्त भारत। देखिए, हमारे कश्मीर में जो कैंपेन चला है ना, इसका जो रिजल्ट है ना, दैट इज फिनोमिनस। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट नशा मुक्त भारत, हमारे कश्मीर में स्पेशली जो, या अगर ओवरऑल देखिए इनिशिएटिव के तहत जो कैंपेन चला और हर जगह पे, यहाँ रैली हुई, श्रीनगर में रैली हुई, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में रैली हुई, एंड लोगों ने किस बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, एंड मोर ओवर कि इसमें हम अपने माहौल को बचाने के लिए जो बात करते हैं, एंड वी आर ट्राइंग कि हमारे इर्द गिर्द ऐसा कोई भी गंदा काम ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो, गंदी सोहबत ना रहे कि जिससे हमारे बच्चे दिन ब दिन ख़त्म होते जाएंगे, या फिर जिससे हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं उस गलत आदत की लत लग जाए, या फिर कहीं ना कहीं उनका करियर, उनकी लाइफ तबाह हो जाए। सो ओवरऑल हमने इस पे बात की, अभी भी बात हो रही है, कैंपेन अभी भी अगर हम देखें इस पे, ये पहल जारी है, या ट्राइंग, एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग, एवरीबॉडी, एवरीवन इज ट्राइंग कि हमें नशा से मुक्ति मिले और हम अपने माहौल को, अपने घरों को, अपनी सोसाइटी को साफ और सुथरा रखें। अभी शो कैसे बन सकते 88 999 0494 बताइए व्हाट्सएप कीजिए, और शो चुनाव रीत कैसे बन जाएगा।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

तो आपको बता दें कि हाल ही में ये इनिशिएटिव तो स्टार्ट किया गया कि हमने अपने भारत को नशा मुक्त कराना है और हमने अपने भारत को ऐसा बनाना है कि जहाँ पे नशे का कोई नाम ही ना हो। और आपको बता दें कि कश्मीर की जहाँ पर बात आई तो कितने सारे कैंपेन्स चले, और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हम कहें, श्रीनगर में, बांडीपुरा में, कुपवारा में, सो इन जगहों पे जो है डिफरेंट कैंपेन्स हुए जहाँ पर लोगों को अवेयर करने के लिए लोग बढ़ चढ़ कर जिन्होंने हिस्सा लिया, दे वर लाइक कि

ने अपने समाज को इससे फ्री करना, अपने बच्चों को इस गंदगी से दूर करना है। एंड आई बिलीव कि ये इनिशिएटिव से हर कोई इंसान खुश हुआ। एवरीबॉडी वर लाइक, हाँ हमने करना है, हम इसमें वॉलंटियर कर रहे हैं कि हम भी साथ आएंगे और हमने इस गंदगी को दूर करना अपनी सोसाइटी से। एंड आई बिलीव जिसमें हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका हाथ था, पुलिस, आर्मी, हर एक तबके का जो है हाथ था, स्पेशली लोगों का हाथ था जिन्होंने मन से अपने दिमाग से ये सोचा कि नहीं जी, इसको ख़त्म करना है, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। और ये ही सोच के साथ मुझे लगता है कि हमारा आने वाला कल काफ़ी बेहतर बन सकता है। और रابطہ तो आपको और मेरा है, और ये रابطہ यूं ही 2 बजे तक चल के साथ ही। मुझे वो बस दिल में कुछ ऐसा हो जाता था कि नहीं मुझे जाना नहीं है, फिलहाल के लिए ये रابطہ यूं ही चलता रहेगा 2 बजे तक। आप शो का हिस्सा बन जाइए 8999-0494। आपका क्या कहना है इसके कैंपेन के रिलेटेड, आप टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल होकर शो चुना और बीट्स का हिस्सा बन सकते हैं।

दिल की बात साहिल के साथ Only on Radio Chennai 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हमा यार सौदा सौदा
1: ओहो
3: दोनों डील करा सील
1: टाइट वेरी टाइट।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

इमोशन जागा है वो ये है कि 2 से 4 एग्जैक्ट हंगामा ड्रामा इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट और बजिंग क्या है उसके अलावा लाइफ का ऐसा फिलोसफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है। और आते आते ही प्ले होता है कुछ खास कुछ क्रेजी। मैं हूँ असरा सुनता रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

0: ड्रामा आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। क्या हाल चाल है? देखिए हंगामा तो शुरू हो चुका है। हंगामा के साथ ड्रामा, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, क्या बजिंग है और क्या है लाइफ का ऐसा फिलोसफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ आज हौसला देती है। देखिए नहीं, कोई और नहीं कर सकता वैसा, जो जो हम सोचते हैं वो कोई और कैसे सोचे। और इसी से इंस्पायर्ड आज हमारा ट्रेंडिंग रील और मीम्स का चर्चा है। यानी कि अभी वक्त है कि हम फ्रेश बात करें कि तंदूर पे, मार्केट के तंदूर में क्या लगा है। और आज का जो फ्रेश ख्याल है, ख्याल के साथ साथ जो ट्रेंडिंग है, यानी कि लोग रीपोस्ट कर रहे हैं, लिप सिंकिंग डांस रील्स बन रही हैं और लोग कुछ ना कुछ इस ट्रैक पे पोस्ट करना पसंद कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है ट्रैक ही हो भाई, मीम्स के बारे में बात होती है, सब होता है ना सोशल मीडिया की दुनिया का, यानी कि फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। और आज का एक ऐसा

ट्रैक है, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स है ना. लेकिन जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं, सोशल मीडिया पे सिर्फ नई चीज़ें ट्रेंड नहीं करती हैं, बल्कि ऐसी भी ट्रैक्स होते हैं, ऐसी भी मीम्स होते हैं जो किसी मूवी से हैं, पुरानी है, और ये उतनी भी पुरानी मूवी नहीं है. बट दिस इज़ फ्रॉम जली सिक्स, मसकली. वाह वाह, क्या बात कही है कि जिन्हें उड़ना नहीं मालूम है उन्हें आप अटेंशन ही नहीं दीजिए, अपना काम करिए. और ज़रूरी है कि आप किसी की माने ना. देखिए, इनका ये मतलब नहीं है कि आप घर वालों से रेबल करें, बल्कि ये बात है कि आप अपना सुने पर किसी को हार्म ना पहुंचाएं. एंड दिस इज़ वन ऑफ द आइकॉनिक ट्रैक्स, एंड ऑफकोर्स AR रहमान कॉम्पोजिशन. हाउ Can this combo, this duo go wrong? AR Rahman and Mohit Chauhan. Main Wasra, Sundra Air Radio, Chuna 90.4 FM. Yeah, Dil Ki Dhadkan.

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू.
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा.
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ.
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 FM हर दिल की धड़.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। जी हाँ हंगामा, एंड दिस इज द टाइम फॉर अपडेट्स एंड स्पेशली रेलवे अपडेट्स। और अभी की हम बात करें तो हर कोई जो भी ट्रेन है, इट इज शेड्यूल्ड एज पर द समर टाइम टेबल। और आपको समर टाइम टेबल मिल सकता है इधर इन पर्सन अगर आप किसी रेलवे स्टेशन पर हैं, एंड यू शुड टेक अ पिक्चर ऑफ दैट टेबल ताकि वो आपको आगे भी काम आ सके। और अगर बात करें इफ़ यू वॉन्ट इट ऑनलाइन, इट्स ऑन द ऑफिशियल ऐप रेल वन। इसके अलावा जब मंडे है बॉस, और मंडे के दिन सब लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं। देखिए अगर बोला जाए मॉर्निंग ट्रेन्स की बात करें, क्योंकि सुबह सुबह मैं भी ट्रेवल कर रही थी, तो अगर मैं बात करूं भाई, इतनी भीड़, स्टूडेंट्स हो, ऑफिशियल्स हो, लोग ट्रेवल कर रहे हैं बस बिकॉज दे हैव टू कम्यूट। एंड स्पेशली ये जो ट्रेन्स हैं बैक टू बैक आफ्टर वन आवर आ जाती हैं, सुबह सुबह 7 से शुरू होती हैं, एंड अमेजिंग। एंड ये हमारे लिए जो फैसिलिटीज़ हैं स्पेशली ऑन मंडे, एक अलग फीलिंग आती है बस कि सारे लोग अपने काम के लिए जा रहे हैं, इतनी डेडिकेशन, इतनी जील, वो भी इस मंडे के लिए। जी हाँ, आज आता है हर हफ्ते, क्या करें, संडे के बाद ही मंडे आता है, इसीलिए मंडे सबसे ज्यादा इंसान को ऐसा वो कहते हैं ना कि मोटिवेशन गैदर करनी पड़ती है इस मंडे मोटिवेशन में।
2: अरे जा, अरे जा, कबूतर जा।
0: इसके अलावा एक और अपडेट है रेलवे से रिलेटेड, वो भी कंस्ट्रक्शन। एंड हमारा देश आगे बढ़ रहा है क्योंकि देखिए बढ़ता हुआ देश है तो धूल मिट्टी उड़ेगी और बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस हैं जो ऑन गोइंग हैं। और स्पेशली जब हम रिंग रोड की बात कर रहे थे कि मालसुमा और बड़गाम की जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको देती रहती हूँ, पर अभी एक नया कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, दैट इज़ बिटवीन हामरी स्टेशन एंड पटन स्टेशन। और इट इज़ सो गुड टू सी कि हमारा कश्मीर डेवलप हो रहा है, चाहे वो रेलवे की बात करें, वंदे भारत की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास दैट वी काउंट ऑन। आप भी बताइए कि आपको मंडे के दिन ऐसी अपडेट सुनने में कैसा लग रहा है। 8899904904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। मैं मस्टा सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM। मैं बस यूं कही और यू वापस आई।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: हाय मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। And this is the reminder that you can be the part of the show. 8899-94904 is the number you can call, message, text, WhatsApp.
2: Hey, ante amalapuram, ante ahapuram.
0: And moreover, aap apne experiences, thoughts ya jo kuch bhi kehna chahte hain, wo aap bata sakte hain. And kuch hi tracks ke baad hum baat karenge ki aaj ka topic kya hai. क्या है बताइए क्या है, आपको थोड़ी पता है, मुझे पता है, मैं बताऊंगी। बट देखिए कुछ ट्रैक्स के बाद मैं मास्टर सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 एफएम। ये है हर दिल की धड़कन।

అంటే ఆ అంటే.

0: मैं हूँ आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू। रेडियो चुनार।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हाय, मैं हूँ अस्टा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM। जैसे कि मैंने वादा किया था, जो वादा किया वो हाँ निभाना तो पड़ेगा। बट अभी हम बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज, जो हमारा आज टॉपिक है, वो मैंने वादा किया था कि मैं बताऊंगी कुछ ट्रैक्स के बाद। तो लो, मैं आ गई। और आज का जो टॉपिक है, दैट इज अबाउट स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, अभी जो एंटरप्रेन्योरशिप का बूम है, हर दूसरे इंस्टाग्राम पेज पे, हर फेसबुक पेज पे आपको दूसरी रील मिल ही जाएगी कि किसी ने कोई नया इंस्टाग्राम पे पेज शुरू किया है, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया है, बिजनेस शुरू किया है, स्टार्टअप शुरू किया है। और ये जो बूम है, ये सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में देखा जा रहा है। और रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, देयर आर स्पेसिफिक शोज नाउ लाइक शार्क टैंक इंडिया 2.0, and there are so many investors actually जो invest करना चाहते हैं आपकी कंपनी में। So आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये boom जो actually एक taboo था कि भाई से क्या business कर रख, आपके साथ सुन वारिया पोन से क्या कर रख, और आज वही लोग कहते हैं कि भाई business ही choose करना चाहिए over the jobs। Twitter पे मारूंगा tweet, बैठाऊंगा ना मेरे passenger seat, करूंगा pee, गला मेरी sweet, sudden ना रह के होगी जीत। जी हाँ, आपके हमारे साथ जीत ही होगी, बल्कि हमारे लिए वो जीत की और खुशी है, क्योंकि आप विचार शेयर करते हैं, विचारों से बढ़ता है प्यार, तभी तो हम हैं रेडियो चुनार, हर दिल की धड़कन।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM हर दिल की धड़कन।
2: You ain't heard something like this before.

0: Bushy Rich.
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
2: Only on Radio Chunar 90.4 FM.
3: मैं हूं असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन और आज हंगामा पे हम ड्रामा ही नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं और आज की इन्फॉर्मेशन इज अबाउट स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप बूम एंड स्पेशली अगर बात करें हमारे हिंदुस्तान की और सिर्फ कश्मीर की नहीं जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये जो बिजनेस वाला बूम है ये सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है और अभी की बात करें तो सब ज़्यादा लोग जो भी देखे जा रहे हैं इवन दो उन्होंने काफ़ी सारी पढ़ाई की हुई है बट फिर भी दे प्रेफर टू गो फॉर बिजनेस एंड मोर ओवर हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ है स्पेशली ये चीज़ है कि हर चीज़ को एक एंटरटेनमेंट के तौर पर लोगों के सामने लाते हैं ताकि लोग भी इंस्पायर हो एंड वही चीज़ हुई है एंटरप्रेन्योर बूम की वजह से इन इंडिया स्पेशली व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट शार्क टैंक इंडिया एंड इतना पसंद आया लोगों को वो शो कि रियल बिजनेस डील्स दिखा रहे हैं रियल इक्विटीज़ और जो भी टर्म्स हैं जो बिजनेस में स्टेक होल्डर्स होते हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं बिजनेस जो कंपनीज आपको फाइनेंस करते हैं ये सारी चीज़ें एक आम इंसान सीख सकता था एक्सेसिबल था एंड विद अ हिंट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड मोर ओवर जैसा कि पहले कुछ समय पहले लगभग 5-6 साल पहले तक ऐसा नोशन था ऐसा स्टीरियोटाइप था कि अगर एक इंसान बिजनेस शुरू कर रहा है तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो रेडी हो ऐसा कुछ नहीं होता आजकल बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्पेशली द वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन दिस फील्ड जो बहुत सारी लड़कियां वो घर से शुरू करती हैं रॉ मटेरियल्स लाती हैं एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम कश्मीर दैट हैव मेड अ ब्रांड कश्मीरी ब्रांड चाहे वो स्किन केयर हो मेकअप हो या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ बुटीक्स का फैशन चल रहा है ट्रेंड चल रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का रोज़गार है और जो इंसान ये एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस शुरू करता है स्टार्टअप शुरू करता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी का फ़ायदा नहीं होता बल्कि अपने साथ साथ वो अपनी एक पूरी टीम को बेनिफिट करता है और वो टीम जो होती है फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीम में 10 इंसान है वो 10 इंसान ही नहीं बल्कि 10 घरों को बेनिफिट दे रहे हैं
4: ऐसा जो तेरी शक्ल दिखा दे
3: अब देखिए हम इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं बट एंटरटेनमेंट बैक टू बैक ट्रैक्स जरूरी है मैं मास्टर शो हंगामा सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM मैं बस यूं गई और यूं वापस आई

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कॉपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

You have tuned into the hottest frequency of North Kashmir 90.4 FM. और जैसे कि आज हम business की बारे में बात कर रहे हैं, startup, entrepreneur, boom की बारे में बात कर रहे हैं. How can't we talk about Indian business unicorns? यानी कि unicorn business unicorns वो companies होती हैं, especially these are privately held companies जो actually उनका जो value है, उनका जो turnover है, that is more than $1 billion. या कहर तो इन्होंने मचाया, बट इन अ गुड वे. और अगर हम बात करें कि इंडिया की 130 से ज्यादा कंपनीज एक्चुअली बिजनेस यूनिकॉर्न्स हैं, एंड दैट सेट्स अप द थर्ड लार्जेस्ट सेटअप स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द होल वर्ल्ड. अब अगर हम कंपनीज की बात करें कि कौन कौन सी कंपनीज हैं ऐसी जो एक्चुअली $1 billion से ज़्यादा कमाती हैं, एंड उसमें अगर फाइनेंस की बात करें, जो फाइनेंस टेक है, पेमेंट्स है, उसमें रेजर प्रे, क्रेडिट बी एंड धन ऐप. इसके अलावा अगर ई कॉमर्स डिलीवरी की बात करें, ये इनके साथ तो अपन का लेक कहते हैं ना कि एक नाता जुड़ा हुआ है. और मेरा ही नहीं, आप सबका. मैं बात कर रही हूँ फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो की. और ये इंडियन ऐप्स हैं जो एक्चुअली $1 billion से ज्यादा वैल्यू रखती हैं, एंड दीज आर वन ऑफ द बिजनेस यूनिकॉर्न्स ऑफ इंडिया. इसके अलावा अगर हम AI की बात करें, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो सर्वम एंड नाइसा आर द इंडियाज रैपिडली ग्रोइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज. इसके अलावा डीप टेक और स्पेस की बात करें, तो स्काई रूट एक ऐसा एयरोस्पेस इनोवेटर्स और ऐसी कंपनी है जो एक्चुअली $1 billion से ज़्यादा वैल्यू रखती है. एंड ऑनेस्टली दीज आर ऑल ऑफ द थिंग्स जो एक्चुअली हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. एंड कैसे एक स्टार्टअप जो एक कमरे से शुरू होता है, फिर You can make that little one.

And Roon startup into the India's one of the biggest business unicorn. अभी बताइए आपने ऐसे किस बिजनेस के बारे में सुना है? और देखिए अभी का तो टॉपिक हमारा खत्म होता है, यही बात करते हुए कि कैसे जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं एप्स कंपनीज, दे एक्चुअली मैटर अलॉट एंड दे हैव मेड अप टू $1 billion वैल्यू ऑफ दैट कंपनी एंड दैट मीन्स अलॉट एंड दैट मीन्स डेफिनेटली समथिंग. अभी बताइए आज का यही हमें कॉल ऑफ एक्शन है कि हम अगर हमारे पास अगर आइडिया है कमरे से शुरू होकर इट कैन टर्न इन टू फुल फ्लेज्ड बिजनेस. मैं हूँ अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार. और कुछ ही ट्रैक्स के बाद कुछ स्पेशल है क्योंकि एक नया सेगमेंट यानी कि एक नई अपडेट. मैं हूँ अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM क्योंकि ये है हर दिल.

It's with Archie Diva, only on Radio Channel 90.4 FM.

0: मैं हूं आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

के 4 बजने वाले हैं और आपका और मेरा साथ बराबर 2 से 4 तक रहता है. काफ़ी मज़ा आता है, बहुत सी बातें करते हैं. एंड ये भी ज़रूरी है कि हम आपको याद दिलाएं कि कल आप सामगी करना है आप सबको एंटरटेन. आज के लिए बस इतना ही. बस अपना ख्याल रखिए और याद रखिए कि अपनी लाइफ में कुछ न कुछ क्रेजी करते रहिए और मेमोरीज बनाते रहिए. आज के लिए बस इतना ही. साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड आउट.

0: पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats ve Darce Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner TRK News Kashmir, Nasha Mukt Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner. Radio Chinar 90.4 FM.

Jeremy. Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिल की बात साहिल के साथ ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है।

0: और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए, कौन है हीरो और कौन है जीरो?

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: पंप अप द बगड़ा।
2: व्हाई नॉट
3: पंप अप द बगड़ा।
2: व्हाई नॉट यू वांट टू बी टॉप ऑफ द पॉप्स।
3: व्हाई नॉट यू वांट टू बी टॉप ऑफ द पॉप्स।
1: पंप अप द

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।
2: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चिनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
3: हम है टीम रेडियो चिनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

सुबह चैन आराम राति सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना दर्द हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात, एक बात, लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: बिने सरगम सिखा रहे थे।
1: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
0: पंचम तक।
1: कैसे? कहिए ना।
2: सा सा रे ग म प म ग

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया।
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया, ओ सवरिया।

0: ए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: और बचाओ ओ मुर्गे, ओ मुर्गे, ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। ओ गोरी, ओ नटखट, ओ खटपट, ओ पनघट, ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: दीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुक्तम में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे।

मैंने खींचा आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आ हा हा। हमसे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना।
1: हाँ। इतने से बात न समझा जमाना।
0: आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना।

0: था यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चुनाव की फॉरेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। मुश्किल

0: दे, जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना, अब ना ही कोई उम्मीद ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।